एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कैन गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग बाही देख के अमृठ कीता तिना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े तन आरिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक के सां सुवासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रथमै सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह मृत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी।

प्रसादान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा माननीवां मत उची

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद्यागर।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। ओ आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा रहमत की है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मनो के दर्शन दीदार बख्शे। आप जी का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जी दे पावन स्वरूप दे सुख आसन की सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल जुग की खिमा बख्शना आप जी के भाणे विच दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहना। आप दे भाणे विच बतीत होवे कृपा करो। आप जी अपन सेजा ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सिरबक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मात पिता सतमीत न पाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाई। जय महाभयान दूत जम दला, तह केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जबो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंदना पराय, हर का नाम जपत निस्तराय। अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आगावै। जे मार्ग ए जात अकेला, ते हर नाम संग होत सुहिला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परमगत पाई है। छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत है पार पराही। अनक बिघन जाए संगार है, हर का नाम तत्काल उधार है। अनक जोन जन्मै मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मन कबूना धोवै, हर का नाम कोट पाव खोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइय साध गै संग। जे मार के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा।

अमनहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपने गत में जानो आपे आपन संग आप रवराते तुमरी उस्त तुमते होए नानक अवर ना जान सकोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी।

आय अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे एक वस्त कान बिखोट गवावे एक पीना दे दस भी हरले तो मूड़ा कहो कहा करे ठाकुर।

यानी मन रोज करे अपनी प्रतीत आप ही खोबे बौर उसका विश्वास न होबे। जिसकी वस्त आगह राखे प्रभु की आज्ञा मन माथे उससे चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत सरबर होवत जान अनेत बिरकी छाया सिव रंग लावे और बिन से मन पछतावे। जो दिसे सो चालन हाल लपड़ो ते अंध अंधार बटाऊ से जो लावे ने ताकु हाथ ना आवे के है। मन हर के नाम की ब्री सुखदाई कर कृपा नानका बलै लाई। मिथ्या तन धन कुटम सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राजोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ति आसव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आप सुपर कर तुगमान अस्थिर भगत साध की सर नानक जब जब जीव है हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुन है मिथ्यास पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखद पार त्रय रुपाद मिथ्या रसना पूजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को धावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पार पुकारा मिथ्या बास रेत बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल दे नान घर हर नाम लय। बिरथी सागत की आरजा साज बना के हो व सुचा बिरथा नाम बिना धन अंध मुखावत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथा बेहाये मेघ बना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बृथे सब काम जो गिरबन के नरार दाम तन तन तेजन जिह घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रह तबर कशबर।

जावत जन्म मरा, जिसके अंतर बस है निरंकार, जिसकी सीख तरह संसार। जो तुम भाने तिन प्रभु जाता, नानक उनजन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आप है मानै। आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव सियानव सगल ते रहत, सबका जाने आत्म की रहत। इस भावत सिलाई लड़दाए, थान धरंतर रया समाए।

ब्रजी बहुविधान प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन परमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कब काव्य विचारे कई कोट नवतन नाम ध्यावे नानक करते का अंत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया शर्म माहे कई कोट प्रदेश परमाहे जित जित लाभो तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई गुड़ सिद्ध जति जोगी कई गुड़ राजे रस भोगी कई गुड़ पंखी सर्व उपाए कई गुड़ पाथर बृख निबजाए कई गुड़ पवन बाणी बह संतर कई गुड़ देश भूमंडल कई गुड़ ससियर सूर नखेत्र कई गुड़ देव दान इंद्र से रे शत्र सगल समग्री अपने सुतारे नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार कई गुड़ राजस्थान सत कई गुड़ वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई गोड़ किए रतन समुद कई गुड़ नाना प्रकार जन कई गोड़ किए चिर जीवे कई गुड़ गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई गुड़ जख किनर पिसाज कई गुड़ भूत प्रे सुकर मिर्गाच सबते नेरा सब हूं ते दूर नानका अलिप त्रया भरपूर कई गुड़ पाताल के वासी कई गुड़ नरक सुर्ग निवासी कई गुड़ जन्मे जीवे मरे कई गुड़ बहु जूनी फिरे कई गुड़ बैठत ही खाए कई गुड़ घाले थक पाहे कई गुड़ की है तनवंत कई गुड़ माया मैं चंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब कुछ प्रभु का हाथे कई गुड़ भय बै रागी राम नाम संग संग तिन लिब रागी कई गुड़ प्रभु को खो जंते आत्म पार ब्रह्म लहंते कई गुड़ दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ विनाश कई गुड़ मांगे सात संग पार ब्रह्म तिल लागा रंग जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई गुड़ खाड़ी हर खंड कई गुड़ आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार बसरे उपासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट किन्ने बापान प्रभते ब्रह्मा हे समाता का अंत ना जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रकाश कई कोट तत् के बेते सदा ने हरे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सा दीजे में कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को सा समारे नानकोए परमेश्वर के प्यारे सलोक करन कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार ने जल तल मैयर सोए अष्टपदी करन करामन करने जोग जो तिस भाव है सोई हो खिन में थाप थापन हार अंत ने किश पारा बारा उगमे धार अधर रहा उगमे उपज उगम समाव उगमे ऊंच नीच व्यवहार उगमे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक समय रिया समाई प्रभाव मानु गत पावे प्रभावे ता पाथर थराव प्रभाव न सास राखे प्रभावे ता हर गुण भाखे प्रभावे ता पथ तुधारे आप करे अपन विचार है दुआ सरियांगा आप स्वामी खिले बिकसे अंदर जामी जो भावे सुकार कराव नानक दृष्टि अवर ना आवे कहो मानुक ते क्या हो आवे जो तुस भावे सोई कराव इसके आते तो सब कुछ रे जोत सुभावे सोई करे अनजानत बिख्या मैं अनजानत बिख्या मैं रचा जे जानत अपने आप बचाए पर मैं भूला दै दस्तावे नमक माहे चार कुंड फिर आवे कर कृपा सबनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले किरमै नीज गीत गौ राज पार ब्रह्म गरीब नवा जागा दुष्ट कशुना आवे ते सत्काल दै दस प्रगटावे जागो अपनी करे बख्शीस ताका लेखा ना घने जगदीश जियो बिन सब दसगी रास घटगट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नानक जी वह देख बढ़ाई इसका बल ना इस हाथ करण करावन सर्व को नाथ आग्या गारी बपरा जियो ज्योत सुभावे सोई बंधियो कबू ऊंच नीच मह बस कबू सोग हार खरंग हसा कबू नैंद चिन्ह व्यवहार कबू ऊब आकाश भयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू नृत्य करे बपात कबू सोए रह दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो त्रवाल कबू होए बहे बड़ राजा कबू भिखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे जो पर्व राखे तिवि राह गुरप्रसाद नानक सच कहा कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मोहन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिसाधक मुख ज्ञान कबू गीट हस्पतंग वे जिया अनु जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभावे ते मैं चावे जो तिस भावे सोई होए नानक दूजा वरना कोय कबू सा संगत पावे सस्तान ते बौरना आवे अंतर वे ज्ञान प्रकाश
उस स्थान का नहीं विनाश मंथन नाम अर्थेक रंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग ज्यो जल में जलाए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु के सदगुरबान सलोक सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंदर राज विमान सो नरक पाती हो वसवान जो जाने मैं जो बलवंत सो विष्टा का जंत आपस को कर्मंत कहावे जन्म मरे बो जोन परमावे धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कर बस कर दे गरीबी बसावे नान की यहाँ मुक्त आगे सुख बावे तरमंता कर कर बावे त्रैन समान कर संग न जावे बहुलश कर मानुख पर करे आस

अनंग दर्गे परमान कूड़ कर्म करे अवंधारे शरम पावे सगले बिरधारे अनंग तपस्या करे अहंकार नर्ग स्वर्ग फिर भरे अवतार अनंग जतन करे आत्म नहीं द्रवय दर्गे को कैसे गवे आप सको जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मनोहे कहो नानक ताकि निर्मल धोए जब लग जाने मुझ ते कशोए तब इसको सुख नाही कोए जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब धारे को बैरी मी तब लग नेचल लाही चीत जब लग मोह मगन संगवाए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा दे बंदर लोटे गुरु प्रसाद नानक छुटे सहज घटे लख उड़तावे त्रिप न आवे माया पाशय पावे अनक भोग विख्या के करा नैत्र बतावै खब खब मराय बिना संतोख नहीं घबरा जाए सुमन मनोरथ बिरथे सब गा जाए नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने आस के आद गह विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हो आपे आप प्रभ सोए जो

प्रसन्नष्टपदि अविनाशी परम मन में राग मानु की तू प्रीति आग तस्ते परा ना इंकुश गोय सर्व निरंतर एको सोय अपे बिना अपे दाना गहर गंभीर गीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाऊ नानक मन एहन राव मनसा पूर्ण सरना जोग जोगर पाया सोई हो घर हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर अण ध्रुव मंगल सत जाके सर्वथोग सुनिए घर ताके राज में राज योग में जोगी तब मैं तबीसर ग्रस्त में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तस्पुर का करे अंत न पाया जागी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूछ सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम ध्यावे से ते गुर मैं जागो परमाए जन्म मरै फिर आवा जाय ऊच नीच तिसके स्थान जैसा जनावा तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भे कर एक रंग नाना बित किन्नो विस्तार प्रभु नासी एक अंकार नाना चलत करे खिर माए पूर्व पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी की बधे आवे पाए सब गढ़ दिसके सब दिसके ठाव जब जब जीवे नान खर नाव नाम के धारे सगले जंद नाम के धारे खंड ब्रह्मण नाम के धारे सिमरत भेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे संग नाम के संग उदरे सोन सराबन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जानगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्बल निर्बली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत जन जागर हृदय प्रवेश सत अंदर बुझे जय गोय नाम जब तागी गत आप सत किया सब साते आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सरसो करने हार अपना बूझ करत विचार करते की मितना जाने किया नानक जोत सुभावे सुभरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माजन बुझा तस आया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के भजन पदार्थ लहे वे दाते तू काटन हार जाके संग त्राय संसार जनका सेवक सो बट भागी जनका संग एकल बिलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है भे सच नानको सी भे सच अष्टपति चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सब सेवदार दर्शन सत सत वेखन हार नाम सत सत हमन हार आप सत सत सब धारिया बेगुणा बेगुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सच सुनता बुजन हार गो सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सुरूप हृदय जन मान्या करण कराम दिन मूल पछान्या जागे हृदय विश्वास प्र आया जागे हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान मन प्रगटाया भैते निर्भोय बसाना जिसे बजया तस्माहे समाना बस्त माए ने बस्त गिडाई तागो भिन्ना गहना जाई बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा बुझारी ठाकुर के सेवक है मन प्रति ठाकुर के सेवक ही निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का

असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातारु

तंग नामे नमास तंग ठामे नमास तंग कर्मंग नमास तंग धर्मंग नमास तंग नामंग नमास तंग तामंग नमास तंग अजीते नमास तंग अपीते नमास तंग अबाहे नमास तंग अटाहे नमास तंग अनिले नमास तंग अनादे नमास तंग अछेदे नमास तंग अगादे नमास तंग अगंजे नमास तंग अपंजे नमास तंग उदारे नमास तंग अपारे नमास तंग सोए कै नमास तंग अनेक कै नमास तंग अपूते नमास तंग अजूपे नमास तंग निर्कर्मे नमास तंग निर्परमे नमास तंग निर्देशे नमास तंग निरपेशे नमास तंग निर्नामे नमास तंग निर्कामे नमास तंग निर्ताते नमास तंग निर्काते नमास तंग निर्तूते नमास तंग अपूते

है या चांद है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूझ है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है,

पवित्राय पार्थी से अदिश्य अदृश्य कृष्य भगवती शांत वय प्रसाद कहते के अछेज देशय के अभेज भेषय

मंगदलिहं के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र धान्य के सर्वत्र गावन के सर्वत्र पाहुन के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र राज के सर्वत्र साज है।

खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभुक्त है, परभुक्त प्रवाह है, सुजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है, अपेदीन रूप है, समाहत पराज है, सदा सर्वसाज है,

ब्रह्मांड अणु पहवे नास मनु मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अंग आसने अपहंग उपमा पार गत में ते उदार जल थल अमांड दिस वैसे अपांड जल थल महंत दिस वैस बेअंत अन पाव अनास त्रित तार तु रहास अजान बाहो एक कै सदा हो अंकार आद कसनी अनाद

रूपेणरेखे अकर्मं अपर्मं अगंजे लेखे प्रियंग प्रयाशंद नमस्तर प्रणामे समस्तर प्रणासे अगंजल नामे समस्तर निवासे निरकामं विपुते समस्तर स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विपुते

मलैया गाड़े गिड़ान के तोड़न हार सुबह तनि चक चार लवैया साहेब श्री सब को सिरनायक जाचक साहेब श्री सब को सिरनायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फरेंद्र साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाव थपेंगे था।

वरिये हू जो सदा हमारे पथ्या श्री अह तो जू करे अहो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे।

बोलना, खाने होते खी वाल हो निकी ये तो मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिन्नी आव तजे आहार वासना सुमानी, कहे नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली।

मानव साय गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक स्यों लेवलाय कहे नानक आप करता पे हुकुम बुझाए।

पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वे सूरे दुख रोग संतापी उतरे सुनी सठी वाणी संत साजन पह सरसे पूरे गुरते जानी

दया को दयाल मोहे पतत उदारी है। हे गरीब नवाज तुसी ये बख्शिश कर दो। उन्हां प्यारियां गुरसिखां दे विच्चों आप बहुत ही प्यार वाले गुरसिख माई भाई जी रोजाना दे आप नेमी अते प्रेमी हो।

बस इन्ना की काम है, पानी रिड़की जा रहा है, पानी रिड़की जाओ, दद के भोल है, हां जी दद के भोल है, बरोला नीर दे भुलेखे, पानी रिड़की जाओ, रहा दिन रिड़कते रहो, मिलना कुछ भी नहीं है। साहब जी कहते बस आई बात है, लख चौरासी जिन उपाई सो सिमरो निरवाणी। जे वाहिगुरु निरंकार परमात्मा ने 84 लाख जीव पैदा किए ने, ओनू जपया करो सतनाम श्री।

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई, सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, होवा सिफत खुसम दी, नूर अरसहो कुरसहो झटिया, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया।

काया अंदर आप बस रहे आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी। जो तिस पावै सो करे हर करे सोगी, हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाए बिजोगी। सलोक महला तीजम वाहो वाहो आप अखाएदा गुर शब्द सच सोए, वाहो वाहो सिवत सलाह है गुरमुख बुझे कोई। वाहो वाहो बाणी सच है सच मलावा होए, नानक वाहो वाहो करत

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पे आओ मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरुता पाया सह सेते मन बजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्द उता गाव हरि के राम अनुजनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तो सदा रो हर नाले हर नाल रो तू मन मेरे दुसा विसारण अंगीकारो करे तेरा कारे सब सुवारणा सबना गला समरा स्वामी सुख मन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा शिव सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्यावा जे शब्द कनेरे कह नानी सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वस्या जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान किता गुरु विटो जे दियां वडियाइया कह नानक सुनहो संतो शब्द धरो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दुत दवास किते काल कंठ कुमारिया तुर करम पाया तो जिन को से नाम हर कह लागै कह नानक तै सुख वित कर अनहद वाजे अन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रो संताप तेरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरस पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत

बेनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

देंदा दे लेंदे थक पा है जुगा जुगंतर खा ही खा है हुक्म चलाए राहो नानक विकसा वे परवाह।

आप निरंजन सोए जिन से भया तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हसु कर ले जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहा सुमाई।

एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा हुरद सुनी होए नमक नाम च जानिए नाल चला सब कोए चंगा नाव रखाई कै जस किर जागले जे तस नदर ना आवई ता बात ना पुछे के

किता तन स्वल रूप कित दात जाने कौन कूत किता पसाओ एको कवाओ तिसे होए लख दरियाओ।

अहंकार असंख जापो असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंग रनमुख वेद पाठ असंग जोग मन रह उदास असंग भगत

विश्राय अंत न सुवते कहण नायांत अंत न कर्ण देण नायांत अंत न वेखण सुणन नायांत अंत न जप क्या मनमंत्र

समाये वड्डे मेरे साहेबा गैर गंभीरा गुण गहीरा कोई न जाने तेरा खेता केवल तेरा रहाओ सब सुरत मिल सुरत कमाए सब कीमत मिल कीमत पाए ज्ञानी ध्यानी गुर गुराए कह न जाए तेरे तिल वड्याए सब सत सब तब सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा क्या वड्याईया तुदगुण सदीक ने ना पाईया करम ले ने ठाक रहाईया

सराहो हरदन के बड़ भाग वडेरे जनार हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिवता साय मिल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागिन जम पास जो सतगुरु सरण संगत ने आए त्रै जीवास जन हर जन सतगुरु संगत पाई तन धर्म सग लिखिया लेखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गूजरी महला पंजवां काहिर मन चितवै उद्यम जा आहर हर जियो परया सैल बथर में जंतु पाए तां कार्य आगे करता।

लोक स्वत बनता कोई न किसके तरिया सिर सिर जग समाए ठाकुर काहे मन भाव करया उड़ ऊड़या वैसे को साथ पाछे बचरे छरिया तिन कवन कलावै कवन चुगावै मरमै सिमरन करिया सबने दान दस सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बसर बल जाइया तुरंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओ अहंकार सतगुरु प्रसाद

त्याव संतो जी सब दुख विसारण हारा। हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवक देख्या नानक जंतु विचारा। तू कटकटे अंतर सर्व निरंतर जी हरि को ब्रग समाणा। गीता तेग पै खारे जी सब तेरे चोज विनाणा। तू आपे दाता आपे भगता जी हो तो मैंने वरना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंती तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव है तुझी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुझी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जन हर त्याया जी तन तुटी जमकी फासी। जिन नर पौ जन हर नर पौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जन हर त्या जी जन नानक तिन मिल जासी। तेरी भगत भंडार जी पर बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुझी अर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करें हर पूजा दी तब ताप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बस सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भला जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि प्रख्या परंपर करता जी तू देवड़े अवरना कोई। तू जुग जुगे एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई। तुदे आपे भाव है सोई वरता जी तू आपे कर है सोई। तुदे आपे सिर सब पाई जी तुद आपे सिर सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचे यार मेंडा साईं जो तो पावे।

शरण परे की राखो शर्मा सोहेलारा गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सदगुरु प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते काओ ही विचार तित कर गावो सोहेला शिवरो सृजनहार तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हूँ वर्ज सोहेला सदा सुख होए राहो नित न जेड़ा संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते कमण सुमार संभ सहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजने सिसड़िया जो

विश्वाय तस्या कड़िया पैरा तिथि वारी माहो आसुर्दय कौर तनेक नानक कृत के वे सुरागतना श्री महल्ला।

काम क्रोध नगर्भ परया मेरे साधु खंडल खंडाए पूरब लिखित लिखे गुरु पाया मनारले मंडल मंडाए कर साधु।

लागे बसन सोहेला औद कटा दिन सुरैना रे मन गुर मिलका सुवारे राहो यो संसार विकार संसय में तर ब्रह्म ज्ञानी जिसा जगाए प्यावे हुरा सुवा कथ कथा तिन जाने जाको

ही मैं अदास सा संयम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास राव। गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुगत करे मैं पाय हर का नाम तिहाई है सतसंगत मेल मलाय। जे लख स्त्रियां पोग करे नव खंड राज कुमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जूनी पाए। हर हार कंठ जनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिना पिछे रिद सिद फिरे उन्हां तिल ना तुमाए। जो प्रभ भावे सो थिए अवरना करना जाए नानक जीवै नाम लै हर देवो सहज सुभाए। श्री राग महला तीजा घर पहला जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोए गुरमुख कार कमावनी सच घट प्रगट होए। अंदर अंतर जिस कै सच वसै सचे सची सोए सच मिले से ना विछड़े तिन निज घर वासा होए। मेरे राम मैं हर बिन अवरना कोए सतगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा होए राम। शब्द मिले सो मिल रह जिसनु आपे लय मिलाए।

की वाद करे विचार मत बुद्ध पवी ना बुझई अंतर लोभ विकार लख चौरासी भरम दय भ्रम भ्रम होए खुवार पूर्व लिखिया को मावना कोई न मिटन हार सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए शब्द मिले ता हर मिले सेवा।

जिन श्री सबसै दे आधार निर्मल सदा दयाल निरभउ सदा दयाल है सबना करदा सार। नानक गुरमुख बुझी है पाईए मुख द्वार श्री राग महला तीजा जिनी सुन के मन्या तिना निज घर वास गुरमती सो लाहे सच अर पाया गुणतास शब्द रते से निर्मल।

अधूर। जिन गुण तिन सद मन वसे औगुण वंत अधूर। मनमुख गुण ते बाहरे बिरनावे मरदे चूर। जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया अर सोए। अणदिन भगती रत्या तन मन मन तन निर्मल होए। कूड़ा रंग कसुंब का बिन सुजाए दुख रोए। जैसे अंदर नाम परगास है ओए सदा सदा थिर होए। ओए जन्म एहो जन्म।

आए, हर हर नाम ते आईए, जिस न किरपा करे रजाए, जिनी गुरमुख नाम ते आया विचों आप गवाए, वो अंदरों बारों निर्मले सचे सच समाए, नानक आए से प्रवान है, जिन गुरमति हर ते आए, श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ करै व्यापार, हर नाम सलाहन सदा सदा वखर, हर नाम उधार, गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया,

से निर्मले गुर कै सहज सुपाए, मन तन राता रंग स्यों रसना रसन रसाए, नानक रंग न उतरे जो हर धुर छोड़िया लाए। श्री राग महला तीजा, गुरमुख कृपा करे भगत की जय, बिन

0: जाए पदावुआ चले चाकर होए रारन जाने अपना दर कर ठाक ना होए नानक एको रव रहा दूजा अव न कोए श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जमतीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाय निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए रहाओ हर का मंदिर सोहना किया करने हार रव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार हाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा वापार ज्ञान अंजन पै भंजना देख निरंजन पाए गुरत प्रगट सब जानिए जे मन राखै ठाए ऐसा सतगुरु जे मिलै ता सजे लय मिलाए कस कसवट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठौर न पाइनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा दूर कर इहो मल जाए समाए सुख कहो मांगे सब को दुख न मांगे कोए सुखे कहो दुख अगला मनमुख बोझ न होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए वेद पुकारे पाचिए वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म ब्यास मुंजन सेवक साधका नाम रते गुणतास सच रति से जिण गए हो साध बलिहारे जास चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम न होए भगती पाए बिहूणिया मोह काला पत खोए जिनी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप छाने घर वसै हौमै त्रिसना जाए नानक निर्मल उजले जो राते हरनाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए तू जब डर पै दुख भाग दो कणो दुहागणे क्यों थिर रहे सोहाग पाई रे आवर नाही मैं थाओ मैं तन नाम निधान है गुर दिया बल जाओ रहाओ गुरमत पात साबास तिस तिस कै संग मिलाओ तिस बिन कड़ी न जीवो बिन नावै मर जाओ मैं अंदले नाम न विसरे टेक टिकी कर जाओ गुरु जिना का अंदुला चेले नाही ठाओ बिन सतगुरु नाउ न पाइए बिन नामे क्या सुहाओ आए गया पछतावना ज्यों सुनजे घर काओ बिन नामे दुख देरी ज्यों कलर की पीत तब लग महल न पाइए जब लग साच नचीत शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पद नीत हो गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ शब्द सलाही मन वसे होमे दुख जल जाओ सहजे होए मिलावड़ा साची साच मिलाओ शब्द रते से निर्वले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहिन सद सदा हर राखे उरतार सुख मनो विसारिये सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे न दूजी वार शब्द ही ते पाइए हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे बारो बार सब साल आहे आपको वड्डो वडेरी होए गुर बिन आप न चीनिए कहे सुने क्या होए नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए श्री राग महला पहला बिन पिर धन सिंगारिये जुबन बाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख कणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिंगार सच मन पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जाने गुरमुख जान सजाणिए गुर मेली गुणचार सच मिलो वर कामणी पिर मोही रंग लाए मंतन साच विगसया कीमत कहन न जाए हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए मन में मनुआ जी मरै ता पिर रावै नार इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजे खिन कपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाणे रव रह ना तिस काल संताए साहब अतुल न तोलिए कथन न पाया जाए वाह पारी बन जा रहा आए वजो लिखाए कार कमावे सच की लाहा मिले रजाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल अंसा आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तोलाए तोल सी पूरे पूरा तोल ਕਥਨੈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ, ਨਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ, ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਾਈਏ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਈਏ ਸਰਬ ਪਿਆਰ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ ਅਵਗਣ ਮਿਟਣ ਹਾਰ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੈ ਨਾਰਦੇ ਵੀਦ, ਵਿਆਸੈ ਕੋਈ ਰਹਾਓ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਨ ਜਾਣੀਏ, ਅਕਥ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ, ਸਵਲਿਓ ਬਿਰਖ ਹਰੀ ਆਵਲਾ, ਸ਼ਾਵ ਕਨੇਰੀ ਹੋਏ, ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕੀ, ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੇ ਪਾਈਏ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਸਾਂਚੀਏ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਅਪਾਰ, ਸੁਖ ਦਾਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ, ਪਵਜਲ ਬਿਖਮੰਡ ਰਾਵਣੋ, ਨਾ ਕੰਦੀ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲੜਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਮੰਜ ਮਲਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੈ ਕਾ ਬੋਇਤਾ ਨਦਰੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਸੁਖ ਜਾਏ, ਜਿਹ ਵਾ ਜਲੋ ਜਲਾਵਣੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਰਸਾਏ, ਕੱਟ ਬਿਨਸੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੋ, ਜਮ ਪਕੜੇ ਪਛਤਾਏ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਗਏ ਤਨ, ਧਨ ਕਲ ਨ ਸਾਥ, ਬਿਨ ਐਵੇਂ ਧਨਬਾਦ ਹੈ ਭੂਲੋ ਮਾਰਗਾਥ, ਸਾਚੋ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕਥੋ ਕਾਥ, ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਵਾਈਏ ਪਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਏ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਟੀਏ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਛੁਟੀਏ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਲ ਵਲੋ, ਲੋਭ ਜਲੋ ਅਭਿਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਏ ਪਾਈਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ, ਪਛਾੜੇ ਭੀ ਬਿਗਸੇ ਅਸਨੇਹ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੇ ਬਿਨ, ਜਲ ਮਰਨ ਤਨੇਹ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੋ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ
1: ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ, ਰਹੋ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ, ਜਿਉਂ ਅਧਕਿਉ ਤਿਉਂ ਸੁਖ ਕਣੋ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਬਿਨ ਜਲ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀ ਵਹੀ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਅਵ ਪੀਰ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਚਾਤਰਕ ਮੇਹ, ਸਰ ਪਰ ਥਲ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਪਵਹੀ ਕਹੇ, ਕਰਮਲੇ ਸੋ ਪਾਈਏ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਸਿਰ ਦੇਹ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਹੇ, ਆਪਣ ਆਵੈ ਖਵੈ ਦੁੱਧ ਕੋ, ਖੱਪਣ ਨਾ ਦੇਈ, ਆਪੇ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰ, ਖਿਲ ਪਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵਹੀ, ਜਾਣੈ ਦੂਰ ਹਜ਼ੂਰ, ਮਨਮੁਖ ਸੋਜੀ ਨਾ ਪਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਮਨਮੁਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਗੁਰਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੱਚਾ ਨਿਹਣਾ ਤੋਟਹੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋਹੇ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਤ੍ਰਿਬਲ ਸੋਜੀ ਹੋਏ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਏ, ਖੇਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੋ ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰਤਲ, ਕੜੀ ਕੈ ਮਹੋਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਖੇਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜਾਇ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮਲ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੁਹੰਗ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਪਟੀ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਕੇ ਕਰੇ ਖਰਾਹੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਿਲੀਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਪਤੀ ਆਏ, ਮਾਨਮੁਖ ਸੋ ਜੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵਿਛੜ ਝੋਠਾਂ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਰ ਏਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਭੁੱਲੇ ਭੁਲਾਈਐ ਭੂਲੀ ਠੋਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਗੁਰਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਅੰਧੀ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਇਆ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਡੋਹਾਗੜੀ ਨਾ ਪਿਰ ਅੰਕਰ ਸਮਾਏ, ਰਹੋ ਭੂਲੀ ਫਰਿਦ ਸੰਤਰੀ ਭੂਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤਲ ਜਾਏ, ਭੂਲੀ ਡੂੰਗਰ ਥਲ ਚੜੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ ਡੋਲਾਏ, ਤੁਰ ਵਿਛੋਨੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੈ ਗਰਮੁਠੀ ਬਿਲਾਏ, ਵਿਛੜਿਆ ਗੁਰਮੇਲ ਸੀ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਸੱਚ ਸਹਿ ਸੋਭਾ ਗਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਅਧਾਰ, ज्यो पावे त्यो रख तो मैं तो बिन कवन पतार अखर पड़ पड़ पुलिये पेके बोझ अभिमान भी तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल घुमाना गुर बिन किन समझाइये मन साचा मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाइये गुरमुख तत्व विचार सा तन आप गवाया गुर के शब्द स्वीकार करी ही सो पीर पाया गुर के हित अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होय गुर का शब्द मन वस्या हो मैं विचो खोय नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होय कर मिले ता पाइये आप न लया जाए गुर के चरणी लग रहो बिचो आप गवाए सच्चे से तीरथया सचो पल पाए फुलण अंदर सब को अपुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागा चुसे प्यार नानक साचना विसरा मेले शब्दा पार श्री राग महला पहला तृष्णा माया मोहनी सुत बंदव करनार तन जो बन जग ठगया लभ लोभ अहंकार मूर्ख गोली होमली सावरते संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोहे मैं तुझ बिन अवर न पावी तू पावे सुख होय रहो नाम सलाही रंग सिंह गुर के शब्द संतोख जो दिशे सोचल से कूड़ा मोह न वेख वाट बटऊ आया नित चलदा साथ देख आखण आखे केतड़े गुर बिन भूज न होए नाम डाई जेमले सच रपै तप होए जो तुद पावे से पले खोटा खरा न कोय गुर सरणाई छुट्टी है मनमुख खोटी रास अष्ट धात पासा की घड़िए शब्द विगास आपे परखे पारखु पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब ठिकी सब डिटी ठोक बजाए कहने आत न लभई सच टके पत पाए गुरमतु सलहना होर की मतु कहना जाए जित तन नाम ना पावई ते तन हो मैं वाद गुर बिन ज्ञान ना पाईया बिखिया दूजा साध बिन गुण कामना अभि माया फीका साध आशा अंदर जमया सा रस का सुखाए आशा बंद चलाइए मोहे मोह चोटा खाए अवगण वधा मारिए छुटे गुरमत नाए सर्वे थाई एक तू ज्यो पावे त्यों राख गुरम साचा मनुष्य ना पलो पसाख हो मैं रोग गवाइये शब्द सचे सच पाख आकाशी पटाल तू त्रिभवन हरिया समाए आपे भगती पाओ तू आपे मिले मिलह मिलाए नाम ना विसरे ज्यो पावे तिवर जाय श्री राग महला पहला राम नाम मन बेद्या अवर के करी विचार शब्द सुत सुख उपजै प्रभरा तो सुखसार ज्यो पावे त्यो राख तू मैं हर नाम अधर मन रे साचे खसम जाय जिन तन मन साज सिगारिया तिसे ती लिवलाए रहो तन बैसंतर होमिय एक रति तोल कटाए तन मन सबदा जे करी अनदिन अगण जलाए हर नामे तुल ना पूजी जे लख कोटि करम कमाए अर दो शरीर कटाइये सिर करवतो तराए तन हैम चल गालिये पे तन ते रोग ना जाए हर नाम मैं तुल ना पूजी सब डिठी ठोक बजाए कंचन के कोट दत करी बो हैवर गै वरदान ओम दान गौआ कणी पी अंतर गर्व गुमान राम नाम मन बेद्या गुर दिया सजदान मन हट बुद्धि के तिया केते भेद विचार केते बंधन जी के गुरमुख मोक द्वार सच उरे सब को ऊपर सच आचार सब को ऊंचा आखिया नीच ना जिसे कोय एक ने पांडे साजिए एक चानन तहलो होए कर मिले सच पाइये तुर बख्शना में टै कोय साध मिले साधु जना संतोख वसे गुर पाए अकट कथा विचारिये जय सतगुरु माए समाए पी अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए कट कट वाजे किंगरी आंदन शब्द सवाए विरले कोसो जी पे गुरमुख मन समझाए नानक नाम नाम ना विसरा छोटे शब्द कमाए श्री राग महला पहला चिते दिसे तौलहर बगे बंक द्वार कर मन खुशी सारिया दूजे हेत प्यार अंदर खाली प्रेम बिन टह टेरी तनुसार पाई रे तन तन साथ न होए राम नाम तन निर्मलो गुरदास करे प्रभ सोई रहो। राम नाम तन निर्मलो जे देव देवन हार आ गए पूछना होवी जिस बेली गुर करतार आप चढ़ाए छुट्टी है आपे बख्शन हार। मनुख जाने अपने तिया पूत संजोग नारी देख विगसी है नाले हर कर सो सोग। गुरमुख शब्द रंगावले ऐन हर रस भोग चित चले वित जामण साकत डोल डोलाए बार टोंड विगचिए कर मैं वट सुधाए। मानमखो मैं कर मुसी गुरमुख पल्ला पाए साकत निर्गुण हर अपना मूल पछाण। रकत बिंद का एव तनो अग्नि पास पिराण पौने के वश देहुरी मस्तक सच निशान। बहुता जीवन मंगिए मोन लोड़ कोय सुख जीवन तिस आखिए जिस गुरमुख वस्या सोए। नाम हुणे क्या गणी जिस हर गुर दर्श न होए जो सुपने निस्पुलिए जब लग निद्रा होए। यो सरपण के बस जीड़ा अंतर हो मैं दोए गुरमत होए विचारिए सुपना एहो जग लोए। अगन मर जल पाइए ज्यो बारक दुध माए बिन जल कमल सो ना थिए बिन जल मीन मराए। नानक गुरमुख हर रस मिले जीवा हर गुण गाए। श्री राग महला पहला तुंगर देख डरावने पैयड़े डरियास ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तिततास। गुरमुख अंतर जानिया गुरु मेली तरियास पाई रे भाव जल बिखुण डराओ पूरा सतगुरु रस मिले गुर तारे हरणाओ। रहो चलना चलना जे करी जाना चलण हार जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार। पी सच्चा सलहना सच्चे थान प्यार दर घर महला सुमने पके कोट हजार। हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लखा पार किस ही नाल न चलिया खप खप मोहे असार। सुन्ना रूपा संची है माल जाल जंजाल सब जग में दोही फेरी है बिना में सिरकाल। पिंड पड़े जो खेल सी बद फैली क्या हाल उत्तां देख विगसी है नारी सेज पतार। चो चंदन लाइए कापड़ रूप सिगार खेहू खेर लाइए छोड़ चले कर बार। मैर मलुक कहिए राजा रोके खान चौधरी रो सलाइए जल बलिए अभिमान। मनुख नाम विसारिया जो डब दद्दा कान हो मैं कर कर जाए सी जो आया जग माए। सब जग का जल कोटड़ी तन में ढे सुए गुर आखे से निर्भय शब्द निवारी पाए। नानक तरिए सच नाम सिर सहा पास सहो मैं हर नाम ना विसरै हर नाम र तन वेसौ। मनमुख पौ जल पचमहे गुरमुख तरे अठाओ। श्री राग महला पहला घर दूजा मुकाम कर कर बैसना नित चलने की तोक। मकामता पर जानिया जा रहे नेह चल लोक। दुनिया कैस मुकामे कर सिद्ध करनी खर्च बादो लाग रहो नामे रहो। जोगी ता आसन कर भय मुल्ला भय मुकाम पंडित बखाने पोतिया सिद्ध भय देव स्थान। सोर सिद्ध गण गंधरम मुन जन सेक पीर सलार दर कूच कूचा कर गए अवरे पै चलन हार। सुल्तान खान मलूक उम्र गए कर कर कूच कड़ी मौत के चलना दिल समझ तू पै पहुंच। सब दह माहें वखाणिए विरला ता बूझे कोय नानक वखाणे बेनती जल थल मैयल सोए। अलहो अलख अगम कादर करण हर करीम सब दुनिया आवण जामणी मुकाम एक रहीम। मकाम ते सुनाओ आखिया जिस सिसना होवी लेख आसमान धरती चल सी मकाम ओही एक। जिन रब चल है निस सस चले तारका लख पलोए मकाम ओही एक है नानका सच बगोए। पहले महले सतारा अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक अकहो सतगुर प्रसाद। गुरु में कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोई। हर जीव सच्चा सच्ची बाणी शब्द मिलावा होए पाई रे भगत इन काहे जग आया पूरे गुर की सेवना की नी बिरता जन्म गवाया रहो। आपे हर जी गुण दाता आपे बख्श मिलाए जे जनते क्या बचारे क्या को आख सुनाए गुरम आपे दे वड़ियाई आपे सेव कराए दे कुटुंब मोहे लबाणा चलदिया नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिसकी कीमत ना पाई प्रभु सका हर जियो मेरा अंते हुए सगाई पेड़े जग जीवन दाता मनोगत गुआई बिन सतगुर को मग ना जाने अंधे ठौर न कई हर सुख दाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई पेड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अंधन भगत करे दिन राती हो मैं मोह चुकाया ज्यों सो राता त्यासो होवे सच्चे सच समाया आपे नजर करे पौ लाए गुर शब्दी विचार सतगुर सेविए साजू पुजाए हो मैं तिसना मार हर गुणदाता सत मन वसे सच रखिया उरार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निधन हर मन वसे हो मैं दुख सब जाए सतगुरु सबद सुनाया हो सत बलिहारे जाऊं अपने मन चित कहे कहा हे बिन गुर आप ना जाई हर जीव भगत वचल सुख दाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला तीजा हो मैं कर्म कमाऊ दे जम दंड लगे तिने आए जय सतगुर सेवन सेव बरे हर से ती लिव लाए मन रे गुरमुख नाम ते आहे गुरु पूर्व करते लिखिया तेना गुरमत नाम समाये रहो वीण सतगुर प्रतीत नावी नाम ना लागो पाओ सुपने सुखना पावी दुख मैं सबे समाये जे हर हर कीचे बहुत लोचिए कीर्तना मेटिया जाए हर का पाणा भगती मनिया से भगत पे डर थाए गुर शब्द लावे रंग सो बिन कृपा लिया न जाए जिस अमृत नीरिए पी पिख फल लागे ताए से जन सचे निर्वले जिन सतगुरु नाल प्यार सतगुरु का भाणा कमाउंदे बिख होमे तज विकार मन हट किते उपाय न छूटिए सिमर शास्त्र सोधो जाए मिल संगत साधु बरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम निदान है जिस अंत न पारा वार गुरमुख से ही सौंदे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा और ना कोई गुर प्रसादी पाइया करम प्राप्त होई श्री राग महला तीजा पंखी बृक्ष वावड़ा सच चुगे गुर पाए आरस पीवे साज रहे उड़े न आवे जाए निज कर वासा पाया हर नाम समाए मन रे गुर की साका गुर की काज कमाए गुर के पाणे जे चले ता अंडन राचे हरणाए रहो पंखी वृक्ष सुहावड़े उड़े चौ जे जाहे जेता उडर दुख कणे नित जाजे ते बिलाए बिन गुर महला जाप ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरि अवला सोचे सहज सुभाए साका तीन जवारिया एक शब्द ले लाए अमृत फल और एक है आपे देखवाए मन ऊबे सुख गए ना फल तना छाओ तना पास ना बैसिए उना कर ना किराओ कटिए।

त पंजवै खान पीण की धात, छेवै कामना पुछै जात, सतवै सांझ किया घरवास, अठवै क्रोध हुआ तन नास, नावै धोले उबे साह, दसवै दद्दा हुआ स्वाह, गए संगीत पुकारी ताह, उड्या हंस छदसाए राह, आया गया मुया नाओ, पिछे पतल सद्यो काव, नानक मनमुख अंध प्यार, बाज गुरु डुब्बा संसार, महला पहला, दस बालतन बीस रावण, तीसा का सुंदर कहावै, चालीसी पुर होए पचासी, पग खिसै सठी के बोडे पाया वै, सत्र का मतहीन, आसिया का व्यवहार न पावै, नवै का से जासनी, मूल न जाने अप बल, टंडोलिम ढूडिम डिठ मैं, नानक जग धुए का धवल हर, पौड़ी तू करता पुरख अगम है, आप सृष्ट उपाति, रंग परंग उपार्जना, बहो बहो विद पाती, तू जाने जिन्नो पाई है, सब खेल तुमाती, एक आवे एक जाहे उठ, बिन नावे मर जाती, गुरमुख रंग चलूलिया, रंग हार रंग राती, सो सेव हो साते निरंजनो, हर पुरख बिदाती, तू आपे आप सुजान है, बड़ पुरख बढ़ाती, जो मन चेत तुद त्याए दे, मेरे सच्चिया, बाल बाल हो, तिन जाती, श्लोक महला पहला।

पावड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग जिन उपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया सुखो उठे रोग पाप कमाया हरखो सोग विजोग उपाय खपाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया सतगुर हथ ने बेड़ झगड़ चुकाया करता करे सोग ना चलै चलाया सलोक महला पहला कूड़ बोल मुरदा रखाए आवरी नो समझावन जाए मुठा आपक मुहाए साथ है नानक ऐसा आगू जापै महला चौथा जिसके अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए हो हर मार्ग आप चल दर नानू हर मार्ग पाए जे अग्गै तीर्थ होए ता मल लहै छप्पड़ नाते सगवी मल लाए तीर्थ पूरा सत गुरु जो अणदिन हर हर नाम ते आए ओह आप छुट्ठा कुटंब सियो ते हर हर नाम सब श्रेष्ठ छडाए जन नानक तिस बलिहारनै जो आप जपै अवरा नाम जपाए पौड़ी एक कंध मूल चुन खाहे वन खंड वासा एक भगवा वेस कर फिर हे जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जम काल सिर होना उतरै त्रे बिद मनसा।

आपे कुदरत साजक आपे करे विचार एक खोटे एक खरे क आपे परखनहार खरे खजाने पाइए खोटे सटिए बाहर बार खोटे सच्चे दरगह सुटिए किसे आगे करे पुकार सतगुर पिछे भज पवे हा करनी सार सतगुर खोटे खरे करे।

ना सूर सस मंडलो ना सप्त दीप नह जलो अन्न पौन थिर थिर ना कोई एक तुई महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे दस्त एक दिगर कोई एक तुई महला पहला परंदे ना गिरा हजार दरख्त आप आस कर देहांत सुई एक तुई महला पहला नानक लिलार लिखिया सोए मेट न सक कोय कला तरै हिरै सुई एक तुई पावड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमती आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशाणिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ यार भरम भुलाणिया विष्टा अंदर वास साधना जानिया अमन नावै दुख पाए आमन जानिया नानक पारख आप।

जेते जी जीव है लै साहा जीव वाले ताके असाह। नानक ज्यो ज्यो सच्चे भावै त्यो त्यो देह गिरा महला पहला। एक मास हारी एक तृण खाहे एक ना छत्ती अमृत खा पाहे एक मिट्टिया मह मिटिया खाहे।

बहुत भय असगाह गोते खाहे ना निकल है तीजै मुही गिराह भुख तिखा दोहे चौक भौकिया।

नावे काजी मुल्ला दये बिगोए फिर है बिगुते फिट्टा बत्ते गल्ला जिया मार जी वाले सोई अवरना कोई रख दानो ते सनानो वंजे पास पई सिर खुत है पानी विचो रतनो पन्ने मेर किया मादा आनी आठ सठ तीर देवी थापे बुरबी लगे बाणी नाए निवाजा ना त्या पूजा नावन सदा सुजानी मोया जीव दियागत होवे जा सिर पाईए पानी नानक सिर खुते सहथानी इन्ना गल ना पानी उठे होया होए बिलावल जिया जुगत समाणी उठे अन्न कमादक बाहा सबसे पड़दा होवे उठे काहो चरहे नित सुरही सा धन दही बिलोवे तितके होम जग सद पूजा पया कारज पै कारज सोहै गुरु समुंद नदी सब सिखी नहात्या जित वडे आए नानक जे सिर खुथे नावन नाही ता सत चट्टे सिर छाए नानक जे सिर खुथे नावन नाही ता सत चट्टे सिर खशाए महला दूजा

जन्म मरै त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथे आकार, तीन अवस्था कहे वखियान, तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म न होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाके हृदय वस्या हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद। गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता। गावड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, ब्याजी इहो संसारो, लाभ लोभ मोच कूड़ कमावे, बहुत उठा वह पारो। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यो तार उपर शारो, सुन सुन बे सिख हमारी, सुगिरत कीता रहसी मेरे जीअड़े। बहुण नया व्यवारी रहाओ, हाओ तुद आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करे पुराई, झूठी लायत बारी वेल पराई, जो हे जीअड़े करे चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रही हे, छुट्टड़ आहोई है बनारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जाग चलिया, तामन भला पाया, हालत न पसोबा पालत न ढोई, अहला जन्म गवाया। हो खरी दुहेली होई, बाबा नानक मेरी बात ना पुछे कोई रहाओ। ताजी तुरकी सोई ना रूपा, कपड़ घेरे पारा, किसी नाल न चले नानक, झाड़ चढ़ पे गवारा। ऊजा मेवा मैं सब किस चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा, दे नीव निवा देवाल उसारी, बस मंदिर की ढेरी। संचे संचन देई कैसी, अंध न जाने सब मेरी, संचे संचन देई कैसी, अंध जाने सब मेरी। सोयन लंका सोयन माड़ी, संपै किसे न केरी। सुन मूर्ख मन अजाना, होर तिसे का पाना रहाओ, साहो हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बन जारे। जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जीवाले, गौड़ी चेती महला पहला। आवर पंच हम एक जना, क्यों राखे घर बार मना, मारे लूठे नीत नीत, किसे आगे करी पुकार जना। श्री राम नामा उचर मना, आगे जामदल बिखम कना रहाओ। उसार मनोली राखे द्वारा, पीतर बैठी सात रामृत केल करे, नित कामण अवर लुटेन सो पंच जना। ढाहे मनोली लुटिया देहरा, सातन मकड़ी एक जना, जमडंडा गल संगल पड़िया, भाग गए से पंच जना। काम लोड़ा काम मन लोड़ा सोयना रूपा,

में अमृत रस चाके अमल सतगुरु मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुरु नहीं भेटिया ते सकत मूड़ दिवाने तिनके कर्म ही न तुर पाए देख दीपक मोह पचाने जिनको तुम दयाल कर मिलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगट मत गुरमत नाम समाने गुड़ पूर्व महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी को कथे हर पौ नसिया हर आपे बख्श लय प्रभ साचा हर आप छाए छुटिया मेरे मन जप हर हर हर मन जपिया सतगुरु की शरणाए भज पौ मेरे मन गुर सतगुरु पीछे छुटिया राव मेरे मन सेव सो प्रभ सर्ब सुख दाता जित सेवै निज कर वसिया गुरमुख जाय लहो घर अपना घास चंदन हर जस घसिया मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लला हर मन हसिया हर हर आप दया कर देव त अमृत हरस चखिया मेरे मन नाम बिना को दूजा लागे मेरे मन नाम बिना जो दूजा लागे ते साकत नर जम कुटिया ते साकत चोर जिना नाम विसारिया मन तन के निकट न पिटिया मेरे मन सेव लख निरंजन नर हर जेते सेव लेखा छुटिया जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल न कटिया गौड़ी पूर्व महला चौथा हमरे प्राण वसकत प्रभ तुमरे मेरा

मान तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचित गुर कीनी हर मिले आए प्रभ मेरी रहाओ। जो हमरे मन चित है स्वामी साबित तुम हर जानो मेरी अंध नाम जब सुख पाई नित जीव आस हर तेरी। सतगुर दाता पंथ पदाया हर मिलिया आए प्रभ मेरी अंधन अनद पया वडभागी सब आस पुज जन केरे जगनाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी। जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गोड़ी पूर्वी महला चौथा। यह मनुआ खिन न टिक बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांड हे गुरपुरा पाए बड़ भागे हर मंत्र दियो मन ठांडे राम सतगुर लाले कांडे रहाओ। हमरे

जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ, सत संग ते संग हर तन खटियै, होर थै होर तो पाए हर तन कित न पाई। हर रतन का व्यापारिया, हर तन हर रतन धन विहाजै, कच्चे के व्यापारिया वाक हर तन लिया न जाई। हर तन रतन जवेहर माणक, हर तन नाल अमृत वेले वते हर भगती हर लिवलाई। हर तन अमृत वेले वते का बिजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हलत पलत हर तन की, भगतां को मिली वड्याई। हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर।

हर तन को चक्का नेड़ना आवई, जम जगाती डांड ना लगाई। साकती पाप कर कैस बिख्या तन संचया, तिनायक विख नाल ना जाई। हलते विच साकत दोहले पए, हथ छुड़क गया अगे। पलत साकत हर दर गाटो ही ना पाई। इस हर तन का साह हर आप है, संत हो जिसन दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तने का तो टक देना आवई, जन नानक को गुरु सो जी पाई। इस हर तने का तो टक देना आवई, जन नानक को गुरु सो जी पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हसी भी सच। सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार, छुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सह सियाणपन लख हो है तैं कन चलै नाल। किव सचियारा होइए कब कूड़ै तुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहया जाए, हुक्मे होवन जीय हुक्म लै वडियाई। हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख, दुख सुख पाई है एक न हुक्मे बगसी। सो एक हुक्मे सदा पवाई है, हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मे जे बुझे ताहो मैं कह न कोय। गावे को ताण होवै के सैतान, गावे को दा जन निस्वाण। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै परदे। गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर।

है। हुक्म हुक्म चलाए राहो, नानक विकसावे परवाहो, साचा साहु सात नाय पाख्या पाव अपार, आख मंगह देह देह दात करे दाचार, फेर के अग्गै रखिया जद सह दरबार, मोह के बोलन बोलिया ज सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच न वड्याई विचार, कर्म आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानके बै जानिया सव्यापे सचियार, थाप्या न जाए कीता न होए आपे आव निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविय गुणे निदान, गाविया सुनिया मन रखिया भाओ, दुख पर हसु कर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, तीर्थ नावा जे तिस भावा बिन पाने के नाई, करी जे तीसर ठो पाई वेखा बिन करमा के मिला लई, मत विच रतन जवाहर माणक जेख गुर की सिख सुने, गुरा एक देह बुझाई, सबना दिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चारे आर जा होर दसुने होए, नमक

कानास मन के गद कहे न जाए देखो कह पिछे बचताए कागद कलम न लिखण हार मने का बै करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन सुरत होए मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध मन मोचोटा न खाए मन जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक ना पाए मन पशु पर गिरदाए मन मग न चल पंथ मन धर्म स्थिति संबंध

मैं ना पेख ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव हैं दर गहमान पंचे सो हैं दर राजान।

तिथे होए लग दरियाओ। कुदरत कमण कहा विचार वार आना जावा एक वार, जो तुत पावै साई भले कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख रन मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत।

कार असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन लिखे ते सिर नाए जे फरमाए तिव तिव पाए जेता किता तेता ना हो विणावे ना ही को थाओ कुदरत कमण कहा विचार वार आना जावा एक वार दो तो पावे साए भले कार तू सदा सलामत निरंकार पर ये

रामन चाओ कवन सवेला भक्त कवन कवन थत कवन वार कवन सुरते महाकवन जतो आकार वेल न पाया पंडतिन दे होवे ले पुराण भक्त न पायो कादिया दे लिखन ले कुरान।

अपवै सुमंद ना जानिए सुमंद सा सुल्तान ग्रह थे ते माल तन कीड़ी तुल न हो नहीं जे तुस मन हो न विसराय अंत न सृष्टि कह न अंत अंत न करना देण न अंत अंत

तातलना तमाय केते मंगया जोड़िया पार केते गणत नहीं विचार केते खापा तुटे बेकार केते ले ले मुकर पाहे केते मूरखा ही खाए केते दोपो सदमार ए पै दा चरी दतार बंद खलासी पाना होए हो राख न सके कोई जेको खाए के आखण पाए हो जाने जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आखें से पे के दसनों बख्शें सिफत सा।

तेरे भगत रसाले और कहते गावन से मैं जितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब सचा सच ही नाई है पी हो सीधा न दस।

तीर्थस्नाने प्रभकसमरण दर्गामाने प्रभकसमरण होय सो फला प्रभकसमरण सो फल फला से सिमराजने आप सिमराय नारग ताकै लागो पाए प्रभकसमरण सबते ऊचा प्रभकसमरण उदरे मुचा प्रभकसमरण त्रिसुना बुद्धाय प्रभकसमरण सबके सुजाय प्रभकसमरण नाय जम त्रासा प्रभकसमरण पूर्ण आसा प्रभकसमरण मन की मल जाय अमृत नाम हृदय माहे समाये प्रभु जी बस साध की रसना नानक जन का दास दसना प्रभु को सुमरे से तनवंत प्रभु को सुमरे से पतवंत प्रभु को सुमरे से धन परवान प्रभु को सुमरे से प्रभु प्रदान प्रभु को सुमरे से बमोता दे प्रभु को सुमरे से सर्व के राजे प्रभु को सुमरे से सुखवासी प्रभु को सुमरे सदा बनासी सुमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन की मंगेरवाला प्रभु को सुमरे से परोपकारी प्रभु को सुमरे तन सदबल हरी प्रभु को सुमरे से मुख सुहावै प्रभु को सुमरे तन सुख बिहावै प्रभु को सुमरे तन आत्म देता प्रभु को सुमरे तन निर्मल रीता प्रभु को सुमरे तन आनंद कनेरे प्रभु को सुमरे बस अरनेरे सन कृपा ते अंदन जाग नाने सुनन पूरे पाग प्रभु के सुनन कार्य पूरे प्रभु के सुनन कब न चूरे प्रभु के सुनन हर गुणवानी प्रभु के सुनन सह सुमानी प्रभु के सुमरण ने चले आसन प्रभु के सुमरण कमल बिगासन प्रभु के सुमरण अन हद चुनकार सुख प्रसन्न कंदना पार सिमरै सहजन जन को ब्रह्म

दीन दर्द को पंजना कड़कड़ नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। अष्टपदी जय मात पिता।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो कृपन के नारथ धाम धन धन ते जन दे खट बस्यो हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ रह

बृहस्पति जय प्रसाद क्षति अमृत खाय ठाकर को राख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लाव तिस्को सिमर परम गत पाव जय प्रसाद बसा सुख मंदर तिस जाय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह सांग सुख बसना हट पैर सिमर तिस रसना।

सागर संघ प्रगटा सो ज्ञान सागर संघ भो जय प्रभ नेरा सा संघ सबो तन बेरा सागर संघ पाए नाम रतन सागर संघ एक ओपर जतन सार के महमा भरण कौन पराने नानक सागर शोभा ब्रह्मा सुमाने सागर संघ अगोचर मिलाय सागर संघ सदा पर फुलाय सागर संघ आवे बस पंचा सासंग वर्तरा पुंचा सासंग सबके रहन सागर संघ मनोहर बैन सागर संघ न कतुता आवे

ब्रह्मज्ञाने सदा समदर्शे ब्रह्मज्ञाने के रसामृत वर्षे ब्रह्मज्ञाने बंधन तय मुक्ता ब्रह्मज्ञाने के निर्मल दुखता ब्रह्मज्ञाने का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञाने का ब्रह्म ध्यान।

एक और कई कोड़ पर दर्व को हिरे कई कोड़ पर दुख न करे कई कोड़ माया शर्माए कई कोड़ पर दे परमाए जित जित लाभ तत लगना नान करते के जाने करता रचना कई कोड़ सद जति जोगी कई कोड़ राज भोगी कई कोड़ पंके दर्प पाए कई कोड़ पाथर बिरकन बजाए कई कोड़ पौन पाणी।

कुबर जिस जन की आशा जिसके घटिया जम की फसा पार ब्रह्म के जिस मन भूख नान से न लागे दुख जिसको अर्पण मंच ते आवे सो संत सोहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे।

कर कृपा जिसको नाम दिया नाने स्वजन निर्मल थिया जाके मन गुर की परते दिजन्यावे हर प्रवचित भगत भगत सुनिया तेलो है जाके हृदय को है साच करने सचता के रास

किराकेन्द्रकारा स्वसेवे दे अप्रवतारे नाने स्वसेव सा सुमारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक के सर पर राखे अपने दाको दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आवत राखे तंगे गल में को न राखे प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंच ते ऊंच है जो प्रभु अपनी सेवा लाया नाने सो सेवक दिताया निकी गिरी में कद राखे बसम करे लश्कर को डलाखे जिसका साधन काटता होता को राख देख रहा मानस जतन करत वो भात के करत बिरथे दात मारन राखे वरना कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच

कृपा जसाप करे नान सो सेव गुर की मत ले बेस विश्व गुर का मन माने सो सेव परमेश्वर के गत जाने सो सतगुरु जसर देर नावन कबार गुर को बल जाऊं शरण धान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता।

मलमंत एकासरको मनमाहे सर्व रोगनान कमिट जाहे जिस तन को चार कुंट उड़ताव सोतन अर सेवा ते पावे जिस को नित बाछ मीत सुख साधु संग परित जिस सब को करें भली करने सा सब दर के

पुर कमना स्वतमेत कोटाम्बर बिनता इन तय कम हो तुम कमन सना था राज रंगमाया विस्तार इन तय कहो कमन छुटकारो अस्वस्ती रास चूठा डम चूट पासारी जिंदी